के सत्रन के सूल हो के मित्रन के प्राण हो सज्जन सच्चा पातशाह तिरशाह दा शाह हो।

सिव कन को सब गुण सुख दियो, सतरन को पल मोबद कियो। कट कट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर असथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला।

कहो फूल राजा होय बैठा, कहो सिमट पेओ शंकर एकैठा। सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपव, आद जुगाद स्वरूप स्यंपव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो। तुस जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेच्छ करो रणकाता। जे अस्तुर्तव सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखत हुए मरे। पुरख जवन

कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता। किलबिख सकल देहि को हरता, दुष्ट दोखियन को क्षय करता। श्री अस्तु जय।

सहस्पणिज्जय अर्धसहस्वंतीन किहिज्जय पाद्रसुधि अष्टमी रववारा तीर्थ तद्रव ग्रंथ सुधारा इत श्री चरित्रोप

प्रथम तरो भगवत गौतियाना बहुर करो कपता बदनाना कृष्ण जथा मचरे तुर उचारो चूक होए कबले हो सुदारो कब्यो बाच दोहरा जो निज

समेतम्। स्वर्ग बासर अकबर करा सग्रीपुरी समेत चौपई। जो यह कथा सुनै अर गावै दुख पाप तह निकट न आवै।

कई कुट मांग है सात हंकार बंधन लागा रंग जन कह हुए आव सब प्रसन्न आन किए जन सदा तन तन कई कोट खंड यर खंड कई कोट अकाश ब्रह्मांड कई कोट हुए अवतार कई जगत किन विस्तार कई बार पसरे उपासार सदा सदा एक एक अंकार कई कोट किन भपात प्रवृति हुए प्रमाशात आकांतना जन को आप अनुप्रास हुए कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन होते आत्म प्रकाश कई कोट तत् की बीते सदा निहार है कुनेत कई कोण नाम राह पी वह अमर पय साध साध ही जीव है कई कोण नाम गुण गावे तुमरा सब सुख सहज संभाव है अपने जन को सास सास मारे नानक कोई परमेश्वर के प्यारे श्लोक करण कारण प्रवी कह दूसर नाह कोई नानक देह बलहार न जल धर्म जल सोय अष्टपदी कर्म करावन करण जोग जो देह पाव सोई हो खिन मैं था उथा पनारा अंत नहीं किस परावार हुक्म तार अतार रहावे हुक्म उज हुक्म समावे हुक्म उज नीच व्यवहार हुक्म अनक रंग प्रकार कर कर दिखे अपनी बढ़िया ज्ञान साम रह समय प्रभ पावे मानुख गात पावे प्रभ पावत पाथर तराव प्रभ पावे विंसाह तरख प्रभ पावत हर गुण पाए खे प्रभ पावत पत ते धारे अवग्रह अपन विचारा दोहा श्रेय का स्वाम के रव संतर जम जो पावे सो कर करावे नानक दृष्टि गाव नायक मानुख दिखा हुआ जो दुख पावे सोई करावे इसके हाथ हुई तं सब किशैली जो दुख पावे सोई करी अन जान तू बिखिया महाराज जज जानत अपना बज परम पूला दह दुख तावै निमुख मह चार कुंड फिरावै कर कर बज अपनी भगत दी नानक तीय जाना मिले फिर मैं निज गिर कर राज उपार ब्रह्मगिरी अनुवाज जाक दृष्ट कछु न आवै तिस तत्कार दह दुख प्रगटा जा कहो अपनी करा बख्सीहता करी खाना करा जगदीश जीव पिंड सब दुख गिरा काट काट पुन ब्रह्म प्रकाश अपने बण तू आप बनाई नानक जीवा दीख बड़ा इसका बार नाही सहाथ कर्म क्रम सर कुना था क्या कर बपरा जीव जो दे उपाय सोई भन दियो कब ऊच नीच महबासा कब सो घर खरंग हसा कब नींद चिंद व्यवहार कब आकाश पायल कब बीत ब्रह्मचार नानका मिला बनहार कब निरत कर बपात कब सोए रह दिन रात कब महाक्रोध विकराल कब सर्व ज्योतरवार कब होए बह बड़ राजा कब हो पिखार मिर्च का साजा कब हब कीर्त महावा कब हो परा परा कह जो प्रभ राख दुह रह गुरु प्रसाद नानु साज कह कब हो पंडित करे वख्यान कब हो अंतार लाव ध्यान कब हो तट तीर्थ स्नान कब हो सिद साध कम ज्ञान कब कीड़ हस्त पतंग दिया अनक जोन परम परम नाना रूप जो स्वाग दिखा जो प्रभ पावे तो मन चाव जो पावे सोई हो नानक जाव ना कोई कबू सा संगति हो पावे स्थान ते बहना आवे अंतर हुई ज्ञान प्रकाश उस स्थान करहि बिना समान नाम रति करंग सदा बस हो पार ब्रह्म के संग ज्यों जर मह चराय खटाना त्यों ज्योति संग जो समान मिट गए गावन पाई विश्राम नानक प्रभ के सद कुरबान श्लोक सुखी वासा मुस्किन गावन वार तरी बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्व करे अष्टपदी जिसका अंतर राज जब मान सो नरक पाति होत स्वयं जो जाना मैं जोवन मंद सोवत विष्टा का जान दास कहो कर्म मंद कहावे जन्म अमर वह जोन परमावे तन भूमिका जो करंग मान सो मूर्ख अंधा ज्ञान कर कृपा जिसका हृदय गरीबी वसावे नानकी हमक दाग सुख पावे धनवंता हुई कार कर वावे त्रिण समान काश संग न जाय वह रस करम वा नौख ऊपर कर आस कर पीतर तक हो बना सब त्यार जाना प्रबंध फिर वह हो जाए बस मंद गहरा बाधा आप अहंकारी धर्म राय दस करे खुआरी गुरु प्रसाद जाको मिटे अपमान सो जाना अंदर गह प्रवाह अनुकूल कर्म कर अवतार श्रम पाव सक व्यर्थ है अंग तपस्या करे अहंकार नर्क स्वर्ग फिर फिर अवतार अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवे हर दर गह कहो कैसी कवे आस को जो पला कहवे दस पलाई निकट नावे सर्व गिरी जाको मन हो कह नानक ताकि निर्मल सो जब लग जाना मुझ तिकाश हुए तब इस कहो सुख नाही कोई जावे जाना मैं किस करता तब लाग कर जोन में फिरता जब तारक उबैरि मीत तब लाग मीह चरण जीत जब लाग मूह मगन संगवाय तब लाग तनुराय दिव सजाय प्रभु कृपा दे बंधन टूटा गुरु प्रसाद नानक हाव छूट सहस खटी लाख कंठ तावे द्रोतनाय आवे माया पाछा पावे अनक भोग विख्या की कर न द्रोतावे खाव खा मारे बिना संतोख नहीं को राजा सपन मनोरथ ब्रथ सब का जनाव रंग सर सुख बड़ भागी कह प्राव तो कन करावन आप सदा सदा नानक हर जाव कन करावन करने हार इस कहा कह विचार जैसे दृष्ट करे तैसा हुई आप प्राव सोई जो किस किनो सपना रंग सब ते दूर सब हो कह संग बुक जाय देखा कर बबी का बही का बह अनेक मरण वंशावा न जाय नानक साध ही रहे असमाय
ਉਪਦੇਸ਼ ਸਮਝਿਆ ਪਾਪੀ ਰਜਾ ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ ਆਉ ਕਿ ਆਪਣ ਵਿਸਥਾਰ ਸਭ ਕਾਸ਼ ਉਸ ਕਾਹ ਕਰਨੇ ਆਰ ਉਸਦੀ ਬਿੰਨ ਕਹ ਕਿਸ਼ੋਏ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤਰੀਕਾ ਸੋ ਆਪਣੀ ਚਰਤ ਆਉ ਕਰਨ

जीत हैं, अपीत हैं, त्रिमाण हैं, निदान हैं, त्रिवर्ग हैं, असर्ग हैं, अनिल हैं, अनाद हैं, अजय हैं, आजाद हैं, अजन्म हैं, अवर्ण हैं, अपूत हैं, अपर्ण हैं, अगंज हैं, अपंज हैं, अचूज हैं, अचंज हैं, अमीक हैं, रफीक हैं, अतंध हैं, अबंध हैं, नृभूज हैं, असूज हैं, अकाल हैं, अजाल हैं, अलाह हैं, अजाह हैं, अनंत हैं, महंत हैं, अलीक हैं, नृसरीक हैं, नृलंब हैं, असंभ हैं,

आनंद हैं, अभगत हैं, विरक्त हैं, अनास हैं, प्रकाश हैं, निचिंत हैं, सुनिंत हैं, अलिख हैं, अदिख हैं, अलेख हैं, अपेख हैं, अटाह हैं, अगाह हैं, असंभ हैं, अगंभ हैं, अनिल हैं, अनाद हैं, अनित हैं, सुनित हैं, अजात हैं, अजाद हैं, चरपट छंद त्व प्रसाद, सर्वंहंता, सर्वंगंता, सर्वंख्याता, सर्वंज्ञाता, सर्वंहर्ता, सर्वंकर्ता, सर्वंप्राणं, सर्वंत्राणं, सर्वंकर्मं, सर्वंधर्मं, सर्वंयुक्ता, सर्वंमुक्ता, रसावल छंद त्व प्रसाद। नमो नरकनासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अभंगं विभूते प्रमाथं प्रमाते सदा सर्वसाथे आगाध स्वरूपे नृपाद विभूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे नृभंगी स्वरूपे सर्वभंगी अनूपे न पुत्रै न पुत्रै न सत्रै न मित्रै न तातै न मातै न जातै न पातै नृसाकं सरीक हैं अमितो अमीक हैं सदैवं प्रभा हैं अजय है अजा हैं भगवती छंद त्व प्रसाद। कै जाहर जहूर हैं कै हाजर हजूर हैं हमें सुल सलाम हैं समस्तुल कलाम हैं कै साहिब दिमाग हैं कै हुसनल चिराग हैं कै कामल करीम हैं कै राजक रहीम हैं कै रोजी देहंद हैं कै राजक रहिंद हैं करीमुल कमाल हैं कै हुसनल जमाल हैं गनीमुल खिराज हैं गरीबुल नवाज हैं हरीफुल सिकन हैं हिरासल फिकन हैं कलंकंग प्रणास हैं समस्तुल निवास हैं अगंजल गनीम हैं अर्जायक रहीम हैं समस्तुल जुबा हैं के साहिब किरा हैं के नरकंग प्रणास हैं बेहस्तुल निवास हैं के सरबुल गवन हैं हमेशुल रवन हैं तमामुल तमीज हैं समस्तुल अजीज हैं परं परमीस हैं समस्तुल अधीस हैं अदेसुल अलेख हैं हमेशुल अपेख हैं जिमीनुल जमा हैं अमीकुल इमा हैं करीमुल कमाल हैं के जुरअत जमाल हैं के अचलंग प्रकाश हैं के अमितो सुभाष हैं के अजब स्वरूप हैं के अमितो विभूत हैं के अमितो पसा हैं के आत्म प्रभा हैं के अचलंग अनंग हैं के अमितो अपंग हैं मधुपार छंद त्व प्रसाद। मुण मण प्रणाम गुणगण मदाम हर बर अगंज हर नर प्रभंज अणगण प्रणाम मुणमन सलाम हर नरे अखंड बर नरे अमंड अनुभव अनास मुणमन प्रकाश गुणगण प्रणाम जल थल मुदाम।